0: हरेप कौन चांसों मायन कहाँ था शागजी चिगरा दाव नचा मर गए को निगरा तेज के सोंग तर चिकचिज के साथ आया मर गए मो सोंग के दखते ना के ने अधिकचिज के जोगों नो चो मक्सा से के चोच
1: चेतिरा ता मर गए खरमो थेम के ने मारा बाप तुम नोरक
2: आमा आमा आमा देंगी ए जी आने के ना मुझे चिगा सोंग जोगी
0: मर गए अंगिगा एक चमोज गंद के तंगे खींद रा
2: मंगे मुमा जिने ना ना नीला ना आमा मैं कहना चुच जीता ना ता दार्ट खालो सुन रिया अका
0: ओए
2: ना मैं कहूँ तो नीला ता नीली मैं चिक ना चुकुजी नी कुआ मो जी ना रिकॉन साचा तिमने ना मचु खालों साचा ती ना ता गुसान चुच मरी पा
0: जो गुआ ना मैं गोलो करमो मैं ना चुकुजो ना ना चाचो खालों को राउक चोलो को राउक चांसों मैं कहूँ नीता शांचिं योंग न्यामले मैं चिक ना चुकुया मैं रिंडर काजे मेक मैं गैमोरा गानी का तने दंत खुचिक करना दान नचा अरंगी ता गोरमो स्टोंस गरा कुमार गुथाया
2: आमा आमा आमा आमा ता चोसुंगी ता चोसुंगी ता नीला नंका ता ना अंसा आमा सिली दासिन जुगु जिरी ते
0: या ता चुन जो ना मासों कुआ खापर्ज गता तां तां जिनार हागो ना पा मारी न्याचे रा थिम्मे थिम्मे ओक
2: आमा आमा आमा तामाज मो निरे
0: मांग मो
2: आमा आमा ना ना छे मैं खंग ना खापरों जासे
0: वो तो ता लेखे या छी ठीको थु ग दन सन जल दन ग थु दन दन दन या
3: Kangla Quarkle Nana Chang Song Mandam Rinzer Pagnal Shona Chang Song Mandam Chang Zin Jung Kam Chena Chang Song Mandam
4: Retok Bunan Batina Tam the Near Chinam Chickalamak Haran Sugalangvi Lizer Vamusir Gunugo Donende Sanjinan Juil